0: धादिंग बासीको लागि खुशीको खबर। टीबीएस बाइक एक्सचेंज तथा खरीद को महाकुंभ मेला आउँदैछ गजरी बजार मासो पुस्रे बैंक अगाडि। महाकुंभ मेला 2083 साल जेठ 24 गते देखि 30 गते सम्म। तपाईसँग जुनसुकी कंपनी को मोटरसाइकल वा स्कूटर छ, अब सजिलै टीबीएस सँग साट्नुहोस्। आकर्षक फाइनेंस को सुविधा, नया बाइक खरीद में विशेष कैश डिस्काउंट, मन परेको बाइक को निःशुल्क टेस्ट ड्राइव पनि। आउनुहोस् साथमा नागरिकता र लाइसेन्स लिएर। थप जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सुन्दर विश्वराल, मोबाइल नम्बर 9848 56 20 88, विश्वराल मोटरसाइकल एन्ड अटो वर्कसप, गजरी गाउँपालिका 1 गजरी बजार धादिङ। टीबीएस बाइक एक्सचेंज तथा खरीद को महाकुंभ मेला अवसर नछुटाउनुहोस्। मेला अवधि में गजरी पुग्नुहोस्। विश्वराल मोटरसाइकल एंड अटो वर्कसप, गजरी गाउँपालिका 1 गजरी बजार धादिङ। संपर्क मोबाइल नंबर 9848 56 20 88।
1: यसै गरी हामी शिवम सिमेन्टले पनि क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज भन्ने हाम्रो वाचा पूरा गर्दै शिर ठाडो पारिरहेका छौँ सदा सर्वदा। शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज।

0: रजियों
1: हनीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों। शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिङदेशी में हरेक महीना को पहिलो शनिवार मानसिक रोग संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण।
2: यदि तपाईं वा परिवारका कुनै सदस्यमा लागू औषध सम्बन्धी दुर्व्यसनी, छारे रोग, निराश हुने, काममा मन नलाग्ने, आलस्य हुने, निन्द्रा नलाग्ने, बिर्सने, शरीर झमझम हुने, धेरै डर लाग्ने, मुटु ढुकढुक हुने, धेरै शंका गर्ने, अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने, आत्मबल कमजोर हुने, बच्चाहरूमा सुस्त मनस्थिति आउने समस्याहरू छन् भने हरेक महिनाको पहिलो शनिबार शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिङदेशीमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस्।
1: स्वास्थ्य परीक्षण पारण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ।
2: फेरी सुन्नुहोस् है त, शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिङदेशी मा हरेक महीना को पहिलो शनिवार मानसिक रोग वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ।
1: थप जानकारी को लागि 010-520-238 र 010-520-263 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
2: स्वस्थ समाज निर्माण को लागि शहीद मेमोरियल अस्पताल प्रणाली धादिङदेशी द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: सरकारी शुल्क में निजी अस्पताल में उपचार काठमांडू को वसुंधरा स्थित 100 बेड को मल्टी स्पेशलिटी केडीसी जनरल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक प्रविधि सहज र गुणस्तरीय उपचार अब सरकारी मूल्यमै पाउनुहोस्। 24 घंटा आकस्मिक सेवा, ओपीडी सेवा, शल्यक्रिया सेवा, साथै ल्याब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको, इंडोस्कोपी लगायत आधुनिक रेडियोलॉजी सेवाहरुको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। केडीसी जनरल अस्पताल, संपर्क नंबर 01-4985-910, 01-4985-911। तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता।

आदिवासीको लागि खुशीको खबर। टीवीएस बाइक एक्सचेंज तथा खरीद को महाकुंभ मेला आउँदैछ गजरी बजार मासोपुसले बैंक अगाडि। महाकुंभ मेला 2083 साल जेठ 24 गते देखि 30 गते सम्म। तपाईसँग जुनसुकै कम्पनी को मोटरसाइकल वा स्कूटर छ, अब सजिलै टीवीएस सँग साट्नुहोस्। आकर्षक फाइनेंस को सुविधा, नया बाइक खरीद में विशेष कैश डिस्काउंट, मन परेको बाइक को निःशुल्क टेस्ट ड्राइव पनि। आउनुहोस् साथमा नागरिकता र लाइसेन्स लिएर। थप जानकारी को लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सुन्दर विश्वराल, मोबाइल नम्बर 9848562088। विश्वराल मोटरसाइकल एन्ड अटो वर्कसप, गजरी गाउँपालिका 1, गजरी बजार, धादिङ। टीवीएस बाइक एक्सचेंज तथा खरीद को महाकुंभ मेला अवसर नछुटाउनुहोस्। मेला अवधि में गजरी पुग्नुहोस्। विश्वराल मोटरसाइकल एंड अटो वर्कसप, गजरी गाउँपालिका 1, गजरी बजार, धादिङ। संपर्क मोबाइल नंबर 9848562088।